0: academic setting, Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
1: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen, and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease, and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
2: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 8

0: जब लोग बिखरे हुए परवानों की तरह और पहाड़ रंग बरंग के धुनके हुए ऊन की तरह होंगे।
1: यहाँ तक कयामत के पहले मरहले का जिक्र है, यानी जब वो हादसे अजीम बरपा होगा जिसके नतीजे में दुनिया का सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। उस वक्त लोग घबराहट की हालत में इस तरह भागे भागे फिरेंगे जैसे रोशनी पर आने वाले परवाने हर तरफ परागंदा व मुंतशिर होते हैं, और पहाड़ रंग बिरंग के धुनके हुए ऊन की तरह उड़ने लगेंगे। रंग बिरंग के ऊन से पहाड़ों को तशबीह इसलिए दी गई है कि उनके रंग मुख्तलिफ होते हैं।
0: फिर जिसके पलड़े भारी होंगे वो दिल पसंद ऐश में होगा। फिर
1: यहां से कयामत के दूसरे मरहले का जिक्र शुरू होता है, जब दोबारा जिंदा होकर लोग अल्लाह ताला की अदालत में पेश होंगे।

कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से रब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट यूके ऑफिस 03001237474.org.uk।
2: बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, मोहसन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। मैं रोज़गुल बज़्म-ए-नात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ हर जुमातुल मुबारक। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी आवाज़ में हमद या नात दूसरों की समातों की नज़र कर सकते हैं। तो सुनते रहिए इंस्पायर FM 105.1
3: एवरी फ्राइडे एट 11 AM।
4: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
5: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना।

0: खिलाफ आजाद है तेरे लहरों के दोष पे आवाज के इस खूबसूरत दृश्य से मुंसलिक हम और आप रहते हैं शो में जिसका नाम है बोल खिलाफ आजाद है तेरे। पता नहीं अजीब बात है जब पूरे दिन में अगर बंदे में जान ना हो या कोई भी चीज ऊपर नीचे हुई हो लेकिन जैसे ही शो करने आते हैं तो जो पहला शो ऑफ फोर्स शो ऑफ फोर्स आजकल बहुत हो रही है हर तरफ तो फिर भी अच्छा लगता है जी। चले 9725019390 लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर लिसनिंग टू रेडियो आजाद वेयर योर वॉइस मैटर्स। आज आपके लिए स्पेशल लिस्नर शो दोबारा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वादा किया था आपसे इस हफ्ते दो नहीं बल्कि तीन शो करेंगे हम। पिछले हफ्ते की जो नाराजगी थी लोगों की जी, नाराजगी भी कहा जा सकता है उन लोगों की जिन्होंने कहा जी आप शोज आजकल मिस कर रहे हैं, तो अगले हफ्ते कि छुट्टी लेने के लिए हमने कहा हम तीन शोज करेंगे चाहे कुछ भी हो, तो हम अपने तीसरे शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इस शो को हम यूज़ करेंगे जो भी यू नो एनीथिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट लिसनर्स शो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम टॉपिक्स में फंस जाते हैं कैद में हो जाते हैं तो आज़ाद सी नेचर और तबीयत है हमारी, तो फिर हम लोगों को भी साथ चाहते हैं कि वो भी खुलकर बात करें और शेयर कर सके चीज़ों पर जो भी आपके जहन में दुनिया में मीडिया में आप जिन चीज़ों से बौद्र होते हैं या उनके बारे में बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हाजिर हैं हम। रेडियो आज़ाद की तरफ से सदका जारिया, ठीक है, जो जा रिया है कहीं जा रिया है वहाँ से कुछ वापस नहीं आ रिया है, वापस चाहिए भी नहीं हमको, हमारा काम अब जा रिया है। 9725019390 को मेहरबा हमारे साथ करते हैं उनसे बात। रेडियो आज़ाद यू रौंदिये
1: जी, अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।
1: मैंने कहा एलर्जीज ने बड़ा आपको एक्टिव कर दिया।
0: नहीं एलर्जीज तो अब ना भी हो तो मेरे पास अब एलर्जी बहाना रह गया है, जब भी मैं स्लो होता हूँ या काम उल्टा चल रहा होता है जो भी चल रहा होता है ना तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। मेरा एक दोस्त है वो कहते हैं कि सर कुछ भी हो जाया करे आप सिर्फ शो जस्ट शो अप फॉर द शो, रेस्ट यू एंड वी विल टेक केयर ऑफ इट। तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है, जब भी मुझे मोटिवेशन मुझे जब थक जाता हूँ मैं या मैं किसी दिमाग मेरा फंस जाता है राइटिंग में या किसी और चीज़ में और आजकल मैं सख्त लॉक लगा हुआ है मुझे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह, लेकिन अगले हफ्ते लॉक भी तोड़ देंगे अगर खुल नहीं रहा तो।
1: आजकल तो वो आ गए हैं लॉक कटर्स आ गए।
0: हाँ जी, आजकल वैसे खबरों में कहा जाता है ना कि हमने इतने इतने टारगेट लॉक किए हुए थे फिर हमने नहीं गिराए। मजाक कर रहे हैं हमारे साथ सीरियसली, तो अजीब अजीब बातें कर रहे हैं जी।
1: बिल्कुल, हर मैटर की खसूसियत है, मसलन कि लकड़ी का टुकड़ा आप डालें तो पानी पे तैरता रहेगा, उसको जितना आप नीचे करने की कोशिश करें उबर के ऊपर आएगा। लोहे की है तासीर या लोहे की अपनी खसूसियत यह है कि आप डालें तो पानी के तय में बैठ जाएगा। लेकिन इंसान मैं देखती हूँ सदियों से सेंट सूफीज गुरुज विजनरी लोग आए और सारी कथा कहानी और एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ ह्यूमन लाइफ समझा के चले गए कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक तरह से मैं ये नहीं कहूंगी कि इल्यूजन उस सेंस में, बट इल्यूजन ये कि आप पैदाइश से बुढ़ापे तक जो कुछ है सब छोड़ के चले जाना है। लेकिन इंसान की फितरत में ये फितना फसाद लड़ाई झगड़ा ये तो शुरू दिन से है और आज भी जारी है और किसी तरह इंसान ये सब चीजें देखते भालते सुधरने की कोशिश नहीं है बल्कि और पाताल में गिरे जा रहा है
0: जी।
1: तो आज का दौर मैं ये कहूंगी कि वो दौर है कि जिसमें न्यूक्लियर एक बटन की देर है दबाने
0: जी।
1: लेकिन इंसान ये नहीं सोचता ना सरहदें रह जाएंगी जब वो लौट के जाना है उसको, तो ना ये माल मता ना ये सब कुछ जो एनर्जी वो परसीव करेगा या गेन करेगा जिसको हम कहते हैं नेकी वो बस जानी है साथ। लेकिन इसके बावजूद मैं ये देखती हूँ कि हवस सारी ये चीजें चीना झपटी मार धाड़ एक दूसरे के हसद बुगज एक दूसरे को नीचा दिखाना ये सारी चीजें छोड़ता नहीं है और आज भी हम उन्हीं मसाइल का शिकार हैं जो सदियों से थे
0: जी।
1: तो ऐसी क्या चीज कोई मौजूदा हो जो नबी और अल्लाह ताला का हम कहेंगे पैगाम भी नहीं कर सका
0: ताकि आसानी हो जाए क्वेश्चन बनाने में और साथ इसके बारे में कुछ बात भी करते हैं। कोई है हमारे साथ रेडियो आजाद जी रौंदिये
2: जी।
0: वालेकुम सलाम, कैसी हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।

0: बिल्कुल, बिजीनेस खत्म हुई आपकी?
1: ओ आई एम ऑलवेज बिजी
0: अच्छा,
1: ऑनेस्टली।
0: इसीलिए आपके लिए फिर हम योर हाइनेस की जगह योर बिजीनेस कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: फरमाइए।
1: ऑलवेज बिजी।
0: पिछला शो
1: सो
0: सुना आपने?
1: हमारे आई एम सॉरी,
0: पिछला शो सुन पाई आप?
1: मैंने सुना, पिछला भी सुना, वो वॉर पे भी सुना। एक्चुअली वॉर वाला इट वाज सो अमेजिंग बिकॉज आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस इन माय माइंड फॉर इयर्स, एंड व्हेन आई लिसन टू इट एंड आई लिसन टू ट्वाइस
0: जी
1: बिकॉज आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक व्हाई पीपल फाइट, व्हाई दिस कंट्रीज फाइट, व्हाई कांट दे जस्ट रेस्ट स्टे इन पीस, यू नो।
0: जी स्पेशली व्हाई पाकिस्तान एंड इंडिया, ये आपस में इनका क्या चक्कर चल रहा है इतने सालों से? ये इसकी कोई ऊंट करवट किसी करवट नहीं बैठता, तो बहुत सारे रीजंस अभी समझ आए हैं आपको।
1: एग्जैक्टली
0: कुछ चीजें ऐसी थी जो
1: तो
0: आप कभी सोचती थी कि आजाद साहब जब शो करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे और कॉल्स कर रहे थे, क्योंकि वो मेरा एक पाकिस्तानी होना, एक मुसलमान होना, एक मेरा फौजी होना और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में, क्योंकि वो इन चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज करते रहते हैं और वो ये देखना चाहते हैं, यार ये बंदा कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी चीज़ करेगा या हमें बताएगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये बायस्ड आदमी है। उनकी ये हसरत बेचारों की, जिनको अकल और समझ है उनकी ये हसरत ही रह जानी है। लेकिन आपको जो लगता था कि इस चीज़ पे जब हम बात करेंगे तो ऐसा कुछ निकलेगा?
1: राइट द थिंग इज नो, देर वॉज नो बायस देयर, इट्स जस्ट लुक्स लाइक इट्स ऑल, यू नो। आई मीन मुझे तो ऑनेस्टली मुझे पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती, आई एम टोटली यू नो अवे फ्रॉम दोज थिंग्स, यू नो। सो
0: पॉलिटिक्स जो
1: ये
0: है ना,
1: सब
0: पॉलिटिक्स जो है, ये सब ये आर्ट है एक रेजोल्यूशन का, किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए। असल में अगर आपको वर्ल्ड की ना, अगर आपको थोड़ा सा सोचने और समझने लगेंगे कि तो अगर आपको घर की पॉलिटिक्स नहीं समझ आ रही ना, रिश्ते की पॉलिटिक्स नहीं समझ आ रही, तो आप कभी भी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, रब जो है वो इंसान से इस बात का तकाजा करता है, उसकी ये डिमांड है कि वो अपने दिमाग को खोले, चीजों को समझे, चीज़ों को सब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करे। पहले वो सेल्फिश होता है, शुरू में नहीं होता वो सेल्फिश। आपने देखा बचपन में हम चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर लिया करते थे, बच्चे टॉफियां ये सारी चीज़ें वगैरह, कभी कभी पक्के हो जाते थे किसी चीज़ के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो दुनिया की देखा देखी में हर बंदा अपनी चीज़ को पकड़ लेता है, अपने पैसों को वो बढ़ाता रहता है, चीज़ें करता जाता है। लेकिन अगर आप इंसान को नहीं समझेंगे ना, उसकी तरफ से आने वाली कर्व बॉल जो आपका जहन आपके ऊपर फेंकता रहता है, और आपके करीब तरीन रिश्तेदार जिन्होंने आपको पैदा किया उनसे लेकर बाकी के इर्द गिर्द जिनके साथ आप बड़े हुए हैं, और दोस्त आपके और आपके करीब तरीन लोग, वो एक रिफाइंड सी एक जेलसी में लोग पड़ जाएंगे और उन्हें कभी पता नहीं होगा। वो एक कुछ लफ्ज़ होंगे, कुछ एक आंख का देखना होगा, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिससे आपको सब एक सेकंड के लिए समझ आती है, लेकिन उसके बाद आप उसको अनदेखा करते हैं। यही वो अनदेखापन है जिसकी वजह से आप बड़े बड़े धोखे, बड़ी बड़ी तकलीफें और बड़ी बड़ी परेशानियां उठाते हैं। हालांकि पहला साइन, पहला सिग्नल, ये सब कुछ आपका इंसान होने के रिफाइन इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से आपको पता चल जाता है।
1: एज के साथ भी आई थिंक द मोर यू गेट एक्सपीरियंस देन यू लर्न मोर,
0: हाँ जी, ये एक
1: यू
0: अच्छा
1: नो।
0: बहाना है, सही कह रही हैं आप। हम अक्सर अपने आप को ये कहते हैं, लेकिन वो गालिब ने कहा था ना, हर दाढ़ी वाला बुजुर्ग नहीं होता। मैंने एज के साथ साथ लोगों को सिर्फ बर्बाद होते देखा है, मैंने लोगों को रिजिड होते देखा है। जिन लोगों को मैं 20s में जानता था ना, वो बड़े फन, एक्साइटिंग, छोटी छोटी चीज़ों पर खुश होने वाले लोग थे। वही लोग जब उनको मैं 35, 40, 15, 20 साल के बाद मिला हूँ, वो इतने रिजिड हैं बिना जाने, वो रिलीजन के बारे में इतना रिजिड हैं बिना जाने, वो अपनी चॉइसेस इन लाइफ के बारे में इतना रिजिड हैं बिना जाने, वो जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं वो उनके साथ इतने रिजिड हैं, और वो उनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वो इतने टाइट हैं कि वो कुछ नहीं दे सकते, ना कुछ ले पा रहे हैं, जो उनको चाहिए वो भी नहीं ले पा रहे। तो ये एज के साथ साथ अगर हम डायरेक्शन सीधी नहीं होगी, एज आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपीरियंस हो जाता है इंसान को, लेकिन एक्सपीरियंस को अगर आप इंटरप्रेट ही नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप नॉलेज लिए चले जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन उम्र के साथ साथ आपको आती चली जा रही है, और तकलीफ दे बात यह है कि एक सर्टन स्पेसिफिक जॉब में होने की वजह से जो लोग नॉलेज गेन करते हैं वो समझते हैं हम नॉलेजेबल हो गए। वो एक डॉक्टर है, बेचारा मरीज ही देखता रहता है 20 साल, वो समझता है मैं नॉलेजेबल हो गया हूँ, हालांकि उसने अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर आवर्स जो हैं वो डॉक्टरी में लगाए हैं, तो वो डॉक्टरी में नॉलेजेबल हो गया है। उसमें अभी वो देख के बता सकता है पेशेंट को चीज़ों को, बहुत सारी बातें बिना किताब को देखे, बिना कंप्यूटर खोले, बिना चीज़ें किए वो बता सकता है। एक्सपीरियंस एक सर्टन तरीके का हो गया, लेकिन वो अपने आप को नहीं जान पाया, वो अपने रिश्तों को नहीं जान पाया, अपने क्रिएटर को नहीं जान पाया, वो अपने मकसद को नहीं जान पाया। इसीलिए ये तमाम ज़्यादातर लोग जब आते हैं ना, बेंटली की चाबी रखते हैं ऐसे, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उनको सूरत पुरत मारी जाती है जब वो अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो मैं खोल के कहता हूँ सर ये ऐसे ऐसे है, या मैडम ऐसे है, या भाभी जी ये बात ऐसे है, तो कहते हैं ये तो फिर सारी ज़िंदगी ख़राब होगी, मुझे कभी समझ नहीं आई, ये तो बहुत सामने थी बात। तो इसका मतलब ये है कि लाइफ हमारी प्रायोरिटी नहीं। हाँ एक बात है, अगर मैं आपको पैसे दूँ ना, कि आज से मैं आपको पैसे दूंगा, 9 to 5 में आप कमाते हैं $1.5 लाख, मैं आपको दिन दूंगा $3 लाख, सोने के 8 घंटों को छोड़ के बाकी के जो 16 आवर्स हैं ये आप मुझे दे दें, और ये आप सोच कर करेंगे तो मैं आपके पैसे कम करूंगा या बढ़ाऊंगा, रिजल्ट दोगे कम करूंगा या बढ़ाऊंगा, रिश्ते अगर अच्छे नहीं तुम्हारे चल रहे मैं तुम्हें पैसे दूंगा रिश्ते रखने की, आप यकीन करें ऐसे परफेक्ट रिश्ते बनाएंगे लोग। ये सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है, ये सारा कुछ घूम फिर कर, ये जंगें, ये घर की जंगें, पावर, पावर से पैसे का ताल्लुक है, पावर से बाकी चीज़ों का ताल्लुक है। मैं अगर खोल के रखूँ ना, मैं पूरे इंडिया की हिस्ट्री आपके सामने खोल दूंगा, मैं इस वक्त मोदी जी जो फरमा रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं और आगे क्या होने वाला है ये भी मैं खोल के रख दूंगा, और आज 20 साल के बाद जब ये कोई बंदा सुन रहा होगा वो कहेगा बिल्कुल ऐसा ही हुआ, पहले में मैंने जो 20 साल पहले बताया था वो भी वैसा ही हो रहा है, क्योंकि नेचर नहीं बदल रही है, नेचर इंसान की नेचर, जब आप के पास कुछ नहीं होता, जब आप बहुत नीचे से उठ के बहुत ऊपर आते हैं, तो वो जो आपके कॉम्प्लेक्सेस, वो इनसिक्योरिटीज़, वो सारी चीज़ें एक बंदे की ज़ात से होते हुए पूरी नेशन में ट्रांसफॉर्म कर जाती हैं, और अगर उसकी सज़ाएं भुगतनी है तो वो बंदा नहीं भुगतता, पूरी नेशन भुगतती है, चाहे वो इधर हो चाहे वो उधर हो। बॉर्डर शॉर्डर तो बहुत बाद में, बॉर्डर तो ये 100-200 साल पहले बने हैं सारे, इससे पहले तो बॉर्डर्स नहीं हुआ करते थे। इब्ने बतूता याद है आपको, बगल में जूता लेके दुनिया में जहाँ मर्जी चला जाता था, अब हमको नहीं जाने दे रहे, अब हमें हर जगह के वीज़े और ये मसले और वो मसले कर रहे हैं। 200 साल पहले ये कुछ भी नहीं था, 200-300 साल पहले तो इतनी आबादी भी नहीं थी, उन्होंने आबादी को जिस तरह और ये बाकी चीज़ें की हैं, इस वक्त दुनिया की आबादी एक्चुअली नंबर्स में 3 बिलियन के नीचे होनी चाहिए थी, तो 3 बिलियन होती तो ना हाइब्रिडाइज्ड वीट मिल रही होती है आपको, ना आपको इंसेक्टिसाइड्स, पेस्ट, ऑर्गेनिक खा रहे होते, नेचुरल चीज़ें कर रहे होते, सब कुछ हो रहा होता, लेकिन बाकी के 5 बिलियन मुँह ना होते, उनकी ख्वाहिशात ना होती, उनकी चीज़ें ना होती, इतने अरब खरब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ना होते। सो ये सारे का सारा सब पैसे के लिए हो रहा है, जिसका हमारी ज़िंदगी में एक्चुअल में इतना लेना देना नहीं था। वो कुछ चीज़ें हैं जो हमें चाहिए ज़िंदगी के लिए, उसके लिए हमें पैसा चाहिए, उसके लिए 7-8 घंटे का काम करना इज मोर देन इनफ, बाकी ज़िंदगी रिश्ते, अकल, समझ और ये सारे काम करने थे जो हमने नहीं किया, तो उसकी सज़ाएँ, घर में भी जंग है। पहली सज़ा पता क्या होता है, ना इल्म होने की या बेइल्म होने की, अपने अंदर की जंग, अपने अंदर से जंग शुरू, आपने खुद महसूस किया इंसान के अपने अंदर कितनी जंग है, वहां से आदमी हारना शुरू करता है। तो जो आदमी अंदर की जंग हारता है वो बाहर की जंगें जीतने की कोशिश करता है, वो कभी नहीं जीत सकता। अंदर की जंग रिश्तों में आती है, खानदान में आती है, खानदान से वो सड़क पर आती है, वो ऑर्गेनाइजेशन में जाती है, जो बचपन में हुआ हुआ है वही आम बेचारे सारी जिंदगी वही झीलते रहते हैं, और वही का सब आगे जाकर स्टेट्स के अंदर भी वही जंग दुनिया में आपको नजर आती है। और अभी थोड़ी देर पहले जो शहनाज जी का क्वेश्चन था कि कितने पैगंबर आए, 1,24,000 बताए गए आपको, और उसमें से आपको 28 के नाम आते हैं, बाकियों को हम मानने की मान ही नहीं रहे, ना राम को मान रहे हैं लोग, ना सिद्धार्थ को मान रहे, वो किसी को पैगंबर मानते नहीं, सिर्फ ये कहते हैं 1,24,000 आए थे तो उसमें से 28 बताए गए, 25 से 28 के नाम हैं, बाकी कहाँ हैं, जिस जिसको हिस्ट्री बता भी रही है लोग उनको नहीं मान रहे, सिर्फ कहते हैं हैं, कहाँ हैं, रिजल्ट्स भी सामने आ गए, रिकॉर्डेड हिस्ट्री भी आ गई, बस नहीं मानना, क्योंकि दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा, हर चीज़ जो हमारी है बस वही हमने दुनिया को बतानी है, बजाय इसके कि उनसे भी देखना है, समझना है, साथ मिलकर चलना है। तो ये वो बातें जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आ नहीं रही हैं, और ये बातें सोचने से समझने से आदमी थक नहीं जाता, आदमी जितना इल्म होगा ना, असल में चीज़ दो चीज़ें हैं, कहते हैं जहालत की ज़िंदगी जीलें वो बेइंतहा अज़ाब है, दूसरी तरफ जानना हमेशा ना जानने से बेहतर होता है, वो कहते हैं ना ईविल यू नो इज़ बेटर देन द ईविल यू डोंट, तो एटलीस्ट यू कैन डिसाइड कि विच वन टू चूज़। और ये कोई इतना लंबा काम नहीं है कि इतना स्ट्रेस ले लें हम मर जाना है हमको, जिस दिन आपको ये एहसास हो गया ना, जो मुझे हुआ था कि आखिर मुझे मर जाना है तो मेरी ज़िंदगी इतनी आसान होगी, तो अगर मर ही जाना है फिर हराम क्यों खाना है, फिर गलत काम क्यों करने हैं, किसी पे जुल्म क्यों करना है, किसी की औलाद को क्यों बर्बाद करना है, अपनी को क्यों बर्बाद करना है, اپنے ذہن کو کیوں برباد کرنا ہے, رشتوں کو کیوں برباد کرنا ہے, باقی مذاہب اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اگر جینیس بننا ہے تو جینیس کا راستہ ہے, ایول جینیس بن کے کیوں برباد کرنا ہے, چوائسز ہوتی ہیں آپ کے پاس. تو یہ ساری باتیں جب آپ اس طرح سوچتے ہیں تو اس میں کوئی اتنا میرے جیسا عام ہینڈی کیپ برین کا آدمی جو کہ ایک بیسک فنکشنل نہیں تھا اور سین رہنا اس کا مشکل ہو رہا تھا, اس نے اگر چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں لے کے یہاں تک زندگی میں آ گیا ہے. اسی لیے تو میں لوگوں کی اس بات پہ یقین نہیں کرتا جب وہ کہتے ہیں کہ جی میرا کچھ نہیں بن سکتا یا میرا کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب میں کور میں جا کر ان کو کھول کے دیکھتا ہوں تو یہ سارے لوگ مجھ سے بہتر لگتے ہیں مجھ کو. تو اگر میں یہاں تک آ سکتا ہوں تو ان میں سے کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے, لیکن اپنے اندر کے اس پاور کو وہ ان لاک ہی نہیں کرنا چاہتے. یہ تالا اندر سے کھلتا ہے, وہ اس کو کھولنا ہی نہیں چاہتے. تو ایک حد کے بعد ہم کیا کر سکتے, بور تو نہیں کر رہے ہم آپ کو؟
1: نہیں نہیں, not at all, not at all, actually that's, I don't know, I have learned a lot from your shows, and as I told you before, I'm able to reorganize my life in last few years. Honestly, I'm in a position where I'm totally at peace, mm-hmm. from inside, outside. Honestly, I have the environment which I wanted to have in my life, mm-hmm. honestly. So I have learned so much and every day when I listen to your show and you know.
0: But you are actually creating your life, theek hai? Ye jo aapne kaha, right. Jab tak jo do kism ki cheeze mili hui hain, controllable factors aur uncontrollable factors. Mm-hmm. Uncontrollable kabhi bhi aapke control mein nahi aayenge. Aapne kahan paida hona tha, aapka rang nasal kya hai, aapka kad kitna hona hai, is kism ki aur kuch cheeze hain, basics. Aur uske baad marna kab hai aapne. آپ کو ایک گفٹ ملا ہوا, وہ آپ کا اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, وہ ماں کے پیٹ میں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے فرسٹ لاسٹ تھری منتھس کے اندر. وہ میں کسی دن وہاں کی جو کانسیپٹ ہے ریلیجن کا اور جو سائنس بتاتی ہے وہاں سے آپ کو کانشیس مائنڈ ان کانشیس مائنڈ کے بارے میں, تیسرا شو بھی ہمارا رہتا ہے جو کہ مجھ سے کوشچنز جو پوچھے گئے ہیں اور بہت سارے ایسے سوال ہیں جو نہیں پوچھ پاتے لوگ, بٹ دے نیڈ ٹو نو دیز تھنگس کہ کیوں ہم بار بار ایک ہی غلطی کرتے ہیں, کیوں سمجھانے کے بعد ہزار دفعہ سمجھانے کے بعد بھی ہم وہی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, برین کیسے بنتا ہے, نیورو سائنس کیا ہے, ہم کہاں سے چیلنجڈ ہیں اور ان چیلنجز کا کیا حل ہے, اور ٹف لو کا اصل جو کانسیپٹ ہے. ابھی تک جو باتیں دو شوز ہوئی ہیں اس میں ابھی ہم نے وہ بات نہیں کی ہے. جب آپ ان کو اپلائی کریں گے اپنے اوپر, بچوں پہ, بڑوں پہ, دنیا کی کسی بھی چیز کے اوپر, تو آپ کو وہ سارے اس کے ریزلٹس ملیں گے, اور آپ کو ٹف لو اپنے آپ سے, اس دنیا سے, اور رب کا یہ سب نظر آئے گا, کیونکہ رب کا ہمارے ساتھ جو لو ہے وہ بے انتہا لو ہونے کے ساتھ ساتھ ٹف لو اس کے اندر ان بلٹ ہے, بائی ڈیفالٹ انسٹالڈ ہے, جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اور وہ کیوں ہے, اس کی ایک ریزن ہے جو ہمارے رشتے میں بھی ہونی چاہیے, جو انسانوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. تو یہ پھر آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آئیں گی. ریسنٹلی کوئی چیز آج کل کوئی چیز بودر کر رہی ہے, یہ جنگ ونگ سے جو معاملات چل رہے ہیں, کچھ سن رہے ہیں لوگوں سے آر پار کے؟
1: Honestly, I don't listen to the news much. I don't have much time, but right. Yes, when you just go on the internet, some things pop out, then I listen to the news.
0: Kya lag raha hai aapko? Aapko media mein kya lag raha hai? Kya kabhi India media, India ka jo media hai, agar aap sunti hain, to kya lag raha hai aapko?
1: You know, I don't listen to the much news, of course.
0: Thoda bahut sunti
1: hain. Because it makes me, you know, when I see all this, I don't know, I just become sad. Because when I see innocent lives, you know, being lost, people, you know, and it's all the time that innocent people are the ones who suffer.
0: Oh, isliye wohi to isliye to paida hue hain na, wo inhi experimentation ki nazar hue hain, aur hum sab log us experimentation ki nazar hue hain. ہم تمام لوگ جو ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک دوسرے کے ساتھ, اور جو پچھلی پیڑھی ہے, جو اس سے پچھلی پیڑھی ہے, جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ, یہ نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے. جب آپ ریلیجن کو نہیں جانتے, جب آپ رب کو نہیں جانتے, تو پھر اس کی یہ سزائیں ہیں. آپ کو پتہ ہے جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ 1947 میں اور اس سے پہلے ساتھ رہتے تھے, دیوالی مناتے تھے, عیدیں مناتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, جب وہ پارٹیشن ہوا, انہوں نے ایک دوسرے کو انہی محلوں میں, انہی گلیوں میں جن بچیوں کے ساتھ بڑے ہوئے تھے, جن بچوں کے ساتھ بڑے ہوئے تھے, جن کے ساتھ سب کچھ ہوئے تھے, وہاں پر اتنے بڑے بڑے ظلم دونوں طرف سے کیے گئے, اور ایسے ایسے قتل ہوئے کہ تقریباً 1,000,000 لوگ مارے ہم نے ایک دوسرے کے. صرف یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, جب فیول کوئی اور کرتا ہے, مقصد کسی اور کا کچھ اور ہوتا ہے, اور ہم تمام لوگ صرف بیسک ہیومن ہونے کے جذبات میں ہم پھنس جاتے ہیں. اور بہت کم لوگ اس وقت ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ریسکیو کے لیے آتے ہیں, جن کو چیزیں یاد رہتی ہیں, ورنہ وہ کہتے ہیں ہماری بہن مارے گی تو دوسرے کی بھی ماریں گے, یا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئے تو دوسرے کے ساتھ بھی کریں گے. یہ بہت کم لوگ ایسے دنیا میں رہ جاتے ہیں, اور یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے. हमें, अगर हम हिंदू हैं तो हमें नहीं पता कि हिंदू क्या होता है, अगर हम मुस्लिम हैं तो हमें नहीं पता असल मुस्लिम क्या होता है, अगर हम किसी भी रिलीजन से हैं और भगवान को, रब को, लॉर्ड को मानते हैं तो असल में क्या करना चाहिए, इंसानी जान की क्या कीमत। वो कीमत जिसकी वजह से वो इंसान खुद अपनी जान नहीं ले सकता, वो उसके लिए इतनी सख्त सजाएं, क्योंकि उसके लिए इतना बड़ा बिखेड़ा पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स बना के रख दी गई है। आप इस डिजर्शन इज़ नॉट एन ऑप्शन, किलिंग समवन एंड गेटिंग यू नो किलिंग योरसेल्फ इज़ नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। ये इतना सेक्रेड काम है इंसान जो है, और हमने उसके साथ क्या कर रहे हैं,
1: कोई वैल्यू नहीं है लाइफ की।
0: जब, और दूसरा, जब अरबों पैदा हो जाएंगे ना, दोनों मुल्कों में कम से कम 2 बिलियन होने वाले हैं, सो 2 बिलियन में कितने दिमाग इस्तेमाल कर रहे होंगे, कितने लोगों को बेसिक ह्यूमन राइट्स मिल रहे हैं। अगर आप स्लम्स में जाके इंडिया में, पाकिस्तान में, बाकी जगहों पे देखें उन लोगों को, उनको सिर्फ नंबर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ना उनकी कभी वैल्यू थी ना कभी होगी आगे जाकर। और ये कि मुल्क वालों को या ऊपर वालों को एहसास है ये बहुत फनी बातें करते हैं हम कभी कभी कि उनकी वजह से ऐसे हो रहा है, या ये अटैक इसलिए हुआ है कि कुछ बंदे मर गए, या ये अटैक इसलिए हुआ है कि फलां बंदे मर गए। बंदे तो रोज़ मरते हैं, हम खुद मारते हैं अपने बंदे रोज़, तो बाहर से मर गए और फलां मर गए, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, सब हमको यूज़ किया जाता है। लेकिन हमारा दिमाग जो है वो बहुत अभी बहुत इन्फेंसी में है। मतलब अगर हज़ार लाखों, ये कहते हैं जी क़यामत आ जाएगी, उससे पहले इंसान ने रिफ़ाइन होना है, तो फिर तो मतलब 10,000 साल की आपको रिकॉर्डेड हिस्ट्री नज़र आती है। अभी तो बहुत कुछ रहता है। अभी तो मैं ना एक दफ़ा कॉलेज के ज़माने की बात है, वहाँ पर एक टेक्सला एक जगह है पाकिस्तान, तो वहाँ पर उधर पुराने हड़प्पा के ज़माने के बहुत पुराने पुराने जो रूवंस हैं वहाँ मिलते हैं। तो हर ज़माने में इंसान को ये लगता था, इससे बहुत पहले भी, जब अहराम मिस्र आप देखते हैं तो इतने बड़े बड़े पत्थर किन मशीनों से उठाए गए, कैसे वहाँ पहुँचाए गए, तो हर ज़माने में बड़ा बड़ा कुछ होता रहा है और कमाल किस्म की कौमें आई, उनके पास ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी थी। तो वहाँ पे आप, क्योंकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और ऐसे लिक्विड्स और ऐसी चीज़ें ईजाद हो गई हैं जो कि बता सकती हैं कि कौन सा पत्थर, कौन सी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस ज़माने की है। तो वहाँ पर एक दीवार थी जो उन्होंने निकाली थी, तो वो दीवार बुद्ध मत के, वहाँ पे बहुत पुराने लोग हैं और बुद्ध जो थे वो बिफोर क्राइस्ट थे एक्चुअली, 400 से 500 साल, तो उनका भी था और हर ज़माने की जो चीज़ें बताई गई थी। तो 5,000 साल की कम अज़ कम एक दीवार थी जिसमें 3 different times की कंस्ट्रक्शन हुई हुई थी। तो इसका मतलब है एक ही दीवार के अंदर 3 different times की कंस्ट्रक्शन हुई थी। वर्ल्ड इतनी दफ़ा टॉपल ओवर होकर ज़मीन ऊपर नीचे हो चुकी थी जलजलों से, और उसके बाद वो कुदरती, वो उन्होंने चीज़ें ऐसे बनाई थी कि उन्होंने काट काट के उसको एक छोटी सी दीवार बना दिया था, कि 5,000 साल की हिस्ट्री उस एक दीवार में थी। और इंसानों ने ना उस ज़माने में कुछ सीखा ना इस ज़माने में कुछ सीखा। और उस ज़माने में एक वक्त पे जब बुद्ध मत बहुत हो गया रिलीजन के तौर पे, तो वो तो जानवर भी नहीं मारना चाहते, इसलिए वेजिटेरियन भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उनकी, तो वो हथियार भी नहीं उठाना चाहते। तो एक वक्त में उन पर जब उनको इन्वेड कर लिया गया तो उन्होंने हथियार नहीं उठाए, तो तकरीबन 60,000 बुद्ध के जो पैरोकार थे, बख्शु भी उनको कहा जाता है, और जो उसके थे, हथियार नहीं उठाए और 60,000 को सर काट दिए गए। तो ये लड़ाई करके आगे से सेल्फ डिफेंस, इसलिए इंसानों के लिए सेल्फ डिफेंस को जायज़ किया गया है, ताकि इस तरह के इंसान के अंदर, अब बहुत बड़े बड़े हैवान हैं, हैवान बेचारा तो इतना जालिम नहीं हो सकता जितने इंसान होते हैं और ये सब चीज़ें, लेकिन अगर आप नहीं जानेंगे खुद को तो अपने अंदर के जानवर को टेम नहीं कर सकेंगे। ये जो सर्वाइवल के लिए हमारे अंदर एक तड़प है, थोड़ा हमें, थोड़ा हमेशा बहुत भी हमें बहुत थोड़ा लगता है, और इसी सर्वाइवल में, और मेरी औलाद, मेरा, मेरी माँ, मेरा बच्चा, ये जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे कभी दुनिया में आसानी, शांति, ये सब चीज़ें नहीं आती, और यही असल इम्तिहान है इंसान का। ठीक है, और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड
2: पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना जरूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आजाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज वहां पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आजाद। तो हम याद रखिएगा जिंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज।
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
4: Did you know? The heart of a blue whale is the size of a small car.
5: Hair loss, acne scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetics Central.
6: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
7: What if we all smiled to a total stranger, instead of walking past them if they were danger? Even smiled at those who hate us. Perhaps their hearts would soften and they would embrace us. Smile when it rained, showing gratitude to Almighty, what He has created. Smile at our brothers and sisters, so that it creates love and removes suspicious. Smile even at our neighbors, something our Prophet faces with eagerness. Smile on trivial materials, escaping from jealousy and hatred. Smile at those who are in distress, pray to Allah to give them happiness and success. Smile to please the most kind, the most merciful. Allah will love us indeed, Allah will love us.
8: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
9: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
10: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11 a.m. to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11 a.m. on your very own Inspire 105.1 FM.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM।
2: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
1: Aaj kaise yaad kiya aapne? Ye to baaton se baat nikal hai.
3: आज नहीं मैं तो शो सुनती हूँ लाइक व्हाट एवर टाइम आई गेट यू नो लास्ट वन आवर यूजुअली बिकॉज़
1: आई कॉल करने से पहले भी तो कुछ सोचा होगा ना कुछ तो होगा दिमाग में
3: आई लिसन टू योर शो ऑन वॉर दैट वाज द लास्ट वन आई लिसन एंड आई वाज ट्राइंग टू लिसन दैट शो ऑन मंडे
1: वॉर वाले शो से क्या सीखा
3: वॉर वाले शो से आई थिंक व्हाट आई अंडरस्टूड इज व्हाट यू एक्सप्लेन्ड आई वाज यूज्ड टू थिंक व्हाई पीपल व्हाई दिस कंट्रीज फाइट ऑल द टाइम एंड यू सेड दैट इज आई फील लाइक इट्स टू मच ड्रामा टू मच मैस डिस्ट्रैक्शन इवन डिस्ट्रैक्शन करना होता है और आई मीन दिस इज नॉट गोइंग टू कम टू एन एंड नोबडी वांट्स टू दिस टू कम टू एन एंड यू नो सो आई मीन लाइक सो मच I don't know.
1: साथ साथ जब जहाँ और आदमी इतना इल्म हासिल करता है ना इल्म जो है ना उसकी कोई एंड नहीं है और आप कभी आपको लगता है ना कि इल्म बहुत हो गया या मेरे लिए इतना काफी है इल्म कभी काफी नहीं होता
3: नो एंड आई फील लाइक यू नो आई फील लाइक आई हैव टू लर्न अ लॉट
1: कोई बात नहीं ये तो आपको क्या सोक्रेटिस भी कहता था जब उसको बिल्कुल एंड पे पहुंचा तो उसने कहा था आई नो दैट आई डोंट नो नथिंग तो और जब हुजूर पाक से पूछा गया कि इंसान को इतना इल्म जब आ जाएगा इतना वो खोज लेगा गारों से निकल के महल बनाएगा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाएगा वो ऐसे करेगा वैसे करेगा तो उसके पास कितना इल्म आ जाएगा खुदा के इल्म में से कितना इल्म आ जाएगा तो उन्होंने कहा जैसे समंदर में आप उंगली डालें बाहर निकालें तो उसके ऊपर जो कतरा रह जाता है बस उतना आएगा लेकिन वो इतना ज़्यादा है क्योंकि खुदा खुद सरापा सर से पाँव तक इल्म है तो जितना इल्म जो है ना और वक्त और इल्म वो कहते हैं वक्त को बुरा मत कहो मैं वक्त हूँ इब्ने आदम मुझे तकलीफ देता है अजियत देता है जब वक्त को गाली देता है कहते हैं वक्त बहुत बुरा आ गया तो वो रब ही वक्त है रब ही इल्म है जिस और एक वक्त में बहुत कुछ है तो इसके बीच में थोड़ा थोड़ा सीखते जाना है समझते जाना है खुद को जानते जाना है अपनी बेसिक ज़रूरतों को समझते जाना है जो मिलता है उसमें से कुछ ना कुछ देने की कोशिश करना है सिस्टम को ट्रिगर करना है अपना रोना धोना बंद करके दुनिया को देखना है कि दुनिया जब आप दुनिया की तकलीफ परेशानी और मसाइल देखेंगे ना आपको अपना कुछ भी तकलीफ नहीं होगी मुझे कोई तकलीफ नहीं है पिछले कितने 10-15 साल जब से मुझे इस बात की समझ आई है मेरा एक दुख भी इस काबिल नहीं है कि जो लोगों को मैं देखता हूँ सुनता हूँ और परेशानियाँ मैं उनकी देखता हूँ जैसे उनकी नींद है जैसे वो सुबह उठते हैं जैसे उनके पास सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं है जैसे वो चीज़ों की उनकी हिर्स हवस ख़त्म ही नहीं होती जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे उन पे इतना तरस और तकलीफ़ आती है मुझे अपना सब कुछ भूल जाता है ना कोई दर्द याद रहता है ना किसी का मर जाना याद रहता है ना किसी का छोड़ जाना याद रहता है ना किसी का तकलीफ़ धोखा कुछ भी कुछ नहीं मुझे याद रहता बिकॉज दुनिया में इर्द गिर्द इतनी तकलीफ़ इतनी परेशानी और इतने मसाइल हैं कि आप हर वक्त ग्रैटिट्यूड में रहते हैं हर रोज एक जन्नत का दिन है एक मौका है एक चांस है
3: आई एग्री यू नो एक्चुअली दैट्स व्हाट आई फील लाइक यू नो व्हेन आई थिंक ऑल सी अराउंड एज यू सेड आई फील लाइक इवन इफ इनफाइनाइट टाइम्स आई से अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज लेस बिकॉज वी आर सो ब्लेस्ड आई मीन वी आर सो ब्लेस्ड इफ यू सी यू नो द व्हाट गॉड हैज गिवन टू यू अल्लाह सुब्हान तआला हैज गिवन टू अस I mean, we cannot complain about anything, honestly.
1: और अमेरिका में हम जहाँ रह रहे हैं ना ये अगर अपना खाना सही कर लेना कम वक्त ठीक है पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड और ये GMO और ये सब निकाल लें तो इसकी दीवार के साथ जन्नत है इतनी जबरदस्त जगह है ये ठीक है
3: Yes, we have. I mean, that's what I do. Sometimes when you feel like I feel a little down for something or whatever, honestly, I have no reason to be down. You just count your blessings, and when you start counting that, you feel like Allah Subhanahu wa Ta'ala has given you everything. I mean, what more you want? What can? Okay, this is the time now just to give to people.
1: Of course,
3: that's what it is now. Just to give whatever you can.
1: Or jo wo thoda thoda bhi hoga, wo प्यार से होगा, मुस्कुरा के देना भी होगा, लोगों से बात शेयर करके देना होगा, इल्म जो आपके पास है उसके बारे में शेयर करना होगा, लोगों के साथ चलना होगा, छोटी छोटी चीज़ों को ओवरलुक करना होगा. एक होती है यू नो द आर्ट ऑफ लुकिंग, गौर करना, ध्यान देना. एक होती है द आर्ट ऑफ ओवरलुकिंग. कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक की जाती हैं, लेकिन जब आप कोई सिस्टम बना रहे होते हैं या कोई चीज़ों को सीधा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस वक्त ओवरलुक नहीं करना है. इंसानों में जो कुछ है उस पर गौर से हर चीज़ को द आर्ट ऑफ लुकिंग यूज़ करना है, और जो रियलिटी है हर बंदे की वो सब कुछ सामने रखना है. फिर उसके बाद जब आप सिस्टम बनाते हैं, उसके बाद जितने अच्छे लोग मिलते हैं उनका दिमाग कैसा है, दिल कैसा है, उसके बाद आपने ओवरलुक करना शुरू कर. छोटी मोटी गलतियाँ, परेशानियाँ, ये मसाइल, ये आपने ओवरलुक करते रहने, क्योंकि आपने ज़िंदगी आगे चलानी है, बढ़ानी है, रिश्ते आगे चलाने हैं. मेहरबान हमारे साथ रेडियो आजादी रौंदी.
4: नमस्ते आजाद जी, कैसे हैं?
1: बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, ठीक हैं?
4: नमस्ते, हाँ ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, जो भी है. तो हम कह रहे हैं इसी टॉपिक को फिर शुरू किया.
1: कोई बात, हमने आज तो
4: कहानी, यही कहानी आप बोलते बोलते जितनी भी बातें आप बताए कल, सब हम लोग सुने, ऐसे बहुत सी चीजें मालूम हुई, क्योंकि उतना तो हमको कभी मालूम भी नहीं था, जबकि हमारे फादर वार में थे, फर्स्ट वार में थे, ना सेकंड. तो जब गोलियां वोलियां लगती थी तो वो देख करके, हम सबसे छोटे हैं अपनी फैमिली में, छोटी लड़की को क्या पता सब बातें, तो बड़ा दुख लगता था. गोली जहां जहां पर दागे पड़े हैं पंखा के और पीछे पर, तो वैसे ही है कि ये सब तो हमेशा से होता रहा है और लोग मानेंगे नहीं, सभी लोग करते रहेंगे, इसका तो कोई किनारा ही नहीं स्टॉप होने का. तो लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन लोगों का विचार जो है तो अपने को सुधारना चाहिए, अपने को कोशिश करना चाहिए कि प्रेम से रह करके कितना फायदा है, तो कोई सोचता नहीं है. और आप इतना सब बताते हैं तब भी उन लोगों को समझ नहीं है. तो इसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं आजाद जी, आप परेशान.
1: यहाँ जो है कहते हैं,
4: यहाँ पर मैं किसी के मुंह से यहाँ पर तो अभी तक मिली भी नहीं बहुत से लोगों को, लेकिन इवन माई हस्बैंड भी कुछ नहीं बताया, न कहे न कुछ पूछे.
1: आपके हस्बैंड ने ये जान लिया होगा ना कि न मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा ढल न जाए कहीं. तो ये बहुत ज़रूरी है, आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखें जिनके जिनके साथ आपकी खाम मखा की लड़ाई है. कुछ लोगों को पता ही नहीं होता वो लड़ रहे हैं. ऐसे कई बदबخت लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, उनको पता ही नहीं होता. वो जो लोग अपने आप से लड़ते हैं ना और ख़ुद से हारते रहते हैं, वो दूसरे लोगों से लड़ते रहते हैं. सो ये चीज़ें भी समझनी है साथ साथ, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, चीज़ें होती रहती हैं. किसी को साहब से उन्होंने कहा, और पिछले एक दो दिन से पाकिस्तान में काफ़ी मसाइल हैं, बड़ी तकलीफ़ में हैं लोग, बड़ी परेशानी में. और यहाँ पर भी जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे थे वो भी पूछ रहे हैं जी कि ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सर, तो मेरे ख्याल से फ़िलहाल के लिए आप लोगों को अपने जो ट्रैवल्स हैं, जो भी, क्योंकि ये काम अब बढ़ गया है, ठीक है. देखिए, मैंने आपको क्लियर कट बताया था, जो सवाल पूछा गया था कि जंग होगी या नहीं, तो जंग नहीं होगी लेकिन लड़ाई होगी, ठीक है. लड़ाई होगी और लड़ाई चलती रहेगी. तो इसीलिए थोड़ा सा चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि मैं साथ साथ, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इस बात से रिलेटेड, तो बहुत सारा, क्योंकि इस वक्त मीडिया जो फैला रहा है, अल्लमान अल हफीज़, कख नहीं पता है मीडिया को, ऐसी फेक न्यूज़ का एक ड्रामा चल रहा है और ऐसी ऐसी बातें घर से घड़ रहे हैं. और अफसोस की बात यह कि अगले दिन शर्मिंदा भी नहीं होते, मतलब इतने बड़े बड़े झूठ दोनों तरफ से. कोई हद होती है ना झूठ की, कम अज़ कम कोई ऐसे झूठ बोलो जो माने भी. साइकोलॉजिकल वॉरफेयर समझते हैं हम भी, केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर तो हो नहीं सकता, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो चलें, एक जब से इंसान है तब से जंग है, ठीक है. और ये जंगें चलती रहेंगी, जब तक हम और आप जिंदा हैं ये जंगें चलती रहेंगी, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन कम अज़ कम कोई ऐसे झूठ होते हैं जो कि आजकल के को 40s या 70s थोड़ी चल रही है, ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर बंदा कैमरा, हर बंदा गन लेके फिर रहा है, कैमरा लेके फिर रहा है, वो हर वक्त वो हर चीज देख रहा है, चाहे वो इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, तो उसको आप छुपा कर और झूठ नहीं बोल सकते दोनों तरफ से। करते हैं बात, रेडियो आजादी रोंदे। हेलो,
5: अस्सलाम
1: वालेकुम। रह गई थी
5: थोड़ी बिजी हो गई थी, थोड़ी ट्रैवलिंग आ गई थी।
1: अच्छा, हमारी अगले हफ्ते आएगी, हम आपको फोकस पे शो कराएंगे, और हमने ना, और हम सब लोग, फिर आपको पता है आप नहीं आती तो फिर मुसीबत बन जाती है, लोग पूछते बिल्कुल ऐसे जैसे आप ड्रोन ना आए इंडिया की तरफ से, तो पाकिस्तानी वैसे ही कैमरा लेके ऊपर देखते रहते हैं कि भाई ड्रोन किधर है। वो अब मेरे बारे में पूछ सकते हैं लोग, तो आप तो बड़े लोग हैं। आपको पता है बड़े लोगों की सबसे पहली पहचान ये क्या होती है?
5: क्या?
1: वो खुद को बड़ा नहीं समझते। और आपको पता है छोटे लोगों की सबसे बड़ी क्या निशानी होती है?
5: क्या?
1: वो खुद को बड़ा समझते हैं। बस यहीं से। आपको पता है हसीन आदमी की क्या निशानी होती है?
5: नहीं,
1: वो कभी खुद को हसीन नहीं समझता। आपको पता है कोजे और इनसिक्योर आदमी की क्या निशानी होता है? और तारीफें करता रहता है अपनी। तो ये सीधी, वो मैं जो कहता हूँ ना कि अगर एक बंदा कहता है जी मैं बड़ा, मैं क्या, अगर आपको कहने की जरूरत पेश आ रही है, ठीक है, वो मार्गरेट थैचर थी ना, बड़ी अच्छी लाइन यूज़ की, अगर लेडी को ये कहने की कोशिश, वो बताना चाह रही है कि मैं लेडी हूँ, तो उसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप लेडी हैं या जेंटलमैन है, खुद पता लग जाएगा।
5: लोगों
1: को कहने दें, लेकिन किस किस्म की तारीफ है नॉर्मली आप देखती हैं लोग करते
5: हैं? एक तो मैं यानी एक तो अपने करियर की, बस उनसे बेहतर कोई नहीं है, फिर बच्चों की, अगर बच्चों से मैं बहुत परेशान हूँ।
1: आपको पता है, आपको पता है लोग क्यों करते हैं अपने बच्चों की इतनी तारीफें?
5: क्यों?
1: क्योंकि इन लोगों का प्राइस पोजेशन जो है ना, वो इनके बच्चे हैं जिनकी फ्री विल है, और वो ज्यादातर उनके काबू में नहीं, और ज्यादातर बच्चे मैं कम अज कम इस वक्त ना 15 बच्चे हैं मेरे दोस्तों के, जवान बच्चे और हमारे बच्चे सब, ठीक है, और हमने जैसे अपने ये बच्चे, हम जो छोटे दो पाल रहे हैं, 20-22 साल के हो गए हैं, तो वो हर बात मुझसे करते हैं, हर बात का मतलब है हर बात, तो वो करते हैं। और बाकी जो बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं, मैं मेरे दोस्तों के पेरेंट्स हैं, मैं उनकी काउंसलिंग भी कभी कभी करता रहता हूँ, कोई कुछ ऐसी बातें जो उनके पेरेंट्स नहीं कह सकते, वो आगे से बदतमीज़ी करते हैं, मैं बड़े आराम से बड़े सहल पसंदी से कहता हूँ, पर उनको यही पता है, मैं उनसे प्यार वगैरह भी करता हूँ। लेकिन इनमें से सारे हमारे जो बच्चे हैं ना, उन्होंने चरसों से वीड को नहीं एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ सब ने किया हुआ, इन्होंने हमारे वहाँ के जो बच्चे हैं कई जगहों के, अभी शहरों की बात में नहीं कर रहा, शहरों में तो हमारे बच्चे बहुत अमेरिकन और इंग्लैंड के बच्चों से बहुत आगे हैं, ठीक है, हर बुरे काम में, गलत काम में। पेरेंट्स बेचारे, आदमी को ये लगता है कि मैंने नहीं किया तो मेरे बच्चे भी नहीं करते होंगे, या हमें कुछ नहीं पता है बाय द वे अपने बच्चों के बारे में, हम उनको कहीं से एक ट्यूटर रखते हैं, कुरान पढ़ाता है उनको, पाकिस्तानी और मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद वो फिर एक दिन उन्हें कुछ अजीब सा दिल के दौरे पड़ जाते हैं, फिर वही चीज़ें जो कभी भी नहीं कहते थे, फिर उसको कवर करते करते उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है, फिर वो लोग कम्युनिटी से आउट हो जाते हैं, ये कह के कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, ये सारी ज़िंदगी फिर एक दूसरे को भी शक्ल नहीं दिखा सकते। ये होता है झूठ में रहने का और रियलिस्टिक ना होने का। तो जब आप, आपकी औलाद देखें जी, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं इस दुनिया में, मुझे इस दुनिया में आए हुए बड़े डेकेड्स हो गए, मैंने अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेके आज तक अपने माँ बाप की फैमिली की तरफ से सबसे ज़्यादा प्यार देखा, वजह जो भी थी मुझे नहीं पता, ना मैं पता करना चाहता हूँ, मैंने अपनी माँ की तरफ से, जो टोटली डिफरेंट लोग हैं, उनसे की तरफ से सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मिला, अपने फादर की तरफ से जो फैमिली है वो सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मिला। मैं जब, मैंने एक दो प्रोफेशन ज्वाइन किए, उनमें मुझे बहुत प्यार मिला, मुझे स्पेशली जो जूनियर्स थे वो और बाकी लोगों से, मेरी लोग बहुत इज्जत करते हैं, बहुत कदर करते हैं, मेरे नाम पे लोगों ने अपने बच्चों के नाम रखे करवाए, बहुत सारी चीज़ें की लोगों ने, ठीक है। लेकिन मैं दुनिया में एक बंदे का, एक इंसान ऐसा था जिसका मैं कह सकता हूँ कि वो मैं उसको जानता हूँ, ठीक है, दो बंदे कह लें, खलीक साहब उसमें शामिल कर लें, दो दो तीन लोग कर लें, मैं किसी भी ऐसे बंदे का जो उस वक्त जिंदा है मैं उसके बारे में नहीं कह सकता कि वो वक्त पर स्टैंड लेगा, या उसके दिमाग के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का स्ट्रक्चर या उसके अंदर रब का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी ऐसे हिंदू को नहीं जानता, किसी को भी नहीं जानता जो कि असल में हिंदू हो और वेदास सेक्रेड विजडम की जो बुक्स हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद, अगर मैं उसको सामने बिठा के 10 सवाल उससे पूछूं वो एक में भी क्वालिफाइड नहीं। मैं किसी भी ऐसे मुस्लिम को नहीं जानता कि जब मैं उससे रब को, जिस रब को मैं किताब से पढ़ के जानता हूं, मैं 5-10 क्वेश्चन निकालूं उसमें से वो एक को भी क्वालिफाई कर जाए, प्रैक्टिकली कार्रवाई और ड्रामेबाजी में नहीं। मैं किसी एक ऐसे क्रिश्चियन को नहीं जानता अपने, और मैं बहुत लोगों को मिलता हूं, बहुत तमाम रिलीजन के लोगों को मैं जानता हूं, अगर मैं क्रिश्चियनिटी की बेसिक्स खोल के उनसे सवाल करूं उनको पता ही नहीं। तो इससे समझ ये आती है कि लोगों के साथ रिलीजन की लड़ाई हो ही नहीं सकती। जब हम मुस्लिम हैं ही नहीं तो फिर लड़ाई किस बात की है, जब हम हिंदू हैं ही नहीं तो फिर लड़ाई किस बात की है, जब हम क्रिश्चियन हैं ही नहीं तो लड़ाई किस बात की है। बेसिक्स में ही हमें अभी तक नहीं पता, किताब खोलकर देखी ही नहीं गई, उसमें आप जब देखेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि हम हमारे रिचुअल्स भी उन तमाम इबादात के खिलाफ हैं जो उसमें लिखी हुई हैं। बाकी बातें तो बहुत बात की, हम लोगों के बारे में हमें ना औलाद से मोहब्बत, जब हमें मोहब्बत का सर पैर ही नहीं पता तो औलाद से जो भी हम मोहब्बत कर रहे हैं वो सब की सब गलत। हमें जब पता ही नहीं है औलाद को पालना कैसे है, बड़ा कैसे करना है, ये कितने, मैं आपको बताऊं, किसी भी इंसान को इस दुनिया में अगर ये पता चल जाए कि एक इंसान को पैदा करके बड़ा करने के अंदर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और खुदा की कहां कहां पकड़ हो सकती है, आप यकीन करें कोई भी जागा हुआ माइंडफुल होश में आया हुआ बंदा औलाद ही ना पैदा करे, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग प्लांट्स नहीं रखने के नहीं इस काबिल कि वो प्लांट रख सकें। मैं जब अपने दोस्तों को उनके बच्चों को देखता हूं और लोगों को अपने इर्द-गिर्द बच्चे पैदा करते हुए देखता हूं मैं डर जाता हूं, इन लोगों ने बच्चे पैदा कर लिए तो जहनी तौर पे अभी तक बच्चे हैं। ये छोटी सी इंडिया पाकिस्तान के आपस में झड़प हुई है, इसमें ऐसे ऐसे लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, इनके भी बच्चे हैं और इनके भी बड़े थे। इंसान होने के नाते शर्म आती है मुझको कि इस दुनिया में इस जमाने में भी हम इतने छोटी छोटी सोच के मालिक लोग हैं और हमें कुछ नहीं पता, और जिस रिलीजन के ऊपर हम इतनी बातें करते हैं, जिसके अंदर 150 फिरके हमने बना लिए स्कूल ऑफ थॉट्स अलग अलग, जिसमें हम अपने अंदर ही लड़ते रहते हैं, और हम इतना नहीं सोच सकते कि जब हम लोग गाय के ऊपर, मुकद्दस गाय के ऊपर इतना लड़ते हैं लोग इंडिया में और लोग पाकिस्तान में भी, लोग क्या क्या फजूल बातें बनाते हैं कि ये बात शुरू कहां से हुई थी गाय का मुकद्दस होना, और वही गाय जिसमें मुकद्दस होने पे कितने मुसलमानों को, कितने हिंदू आपस में लड़ चुके हैं और कितने नुकसानात हो चुके हैं, उसमें बीफ के मीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर नंबर 1 या नंबर 2 इन द वर्ल्ड इंडिया है, और वो बिजनेस मुस्लिम ज्यादा नहीं कर रहे, वो जैन भी करते हैं, वो हिंदू भी करते हैं, और ये नंबर सबको पता है, जाकर इंटरनेट पर चेक कर लें, लेकिन कोई नहीं जानना चाहता। मतलब हमारा पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही झूठ पे है, सब का सब हिपोक्रेसी पे है, और अगर उस क्वालिटी उस हिसाब से मैं देखूं इंसान को तो ये इंसान जो है ना, यकीन करें सिर्फ चलता फिरता 2 टांगों पे, इसको 4 पांव पे जैसे किताब में रब कहते होना चाहिए था, और जानवरों से ही रिश्ते विश्ते करके उसी तरह खाना पीना चाहिए, इसको उसी तरह अपने आप को साफ रखना चाहिए, वही बेसिक्स इसकी नीड्स होनी चाहिए, और जैसे जानवर अपनी औलाद के साथ करता है वैसे हम लोग भी अपनी औलाद के साथ कर रहे हैं बेसिक चीजें। और सूअर को तो यह भी नहीं पता होता कि अपनी औलाद के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, वो सिर्फ पैदा करता है, और इसी तरह सांप अपने बच्चे खा जाता है। तो हम लोग, कई लोग जो हैं वो अपनी औलाद को खुद खा जाते हैं, उनके अंदर ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई डाल के, इंडियन पाकिस्तानी डाल के, और मुसलमान को तो समझ ही नहीं आई कि ये उम्मा का कॉन्सेप्ट है, एक हद के सरहद का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं इस्लाम में, वो तो हर वो बंदा जो रब को रब मानता है, जो अपनी विल सबमिट करता है, वो दुनिया के किसी रिलीजन में कहीं से भी उठ के आएगा, कभी भी पीछे 1000 साल पहले उसका कोई भी रिलीजन था, जब उसने कह दिया रब एक है پیغمبر یہ ہیں اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے, بات ہی ختم ہوگی. کوئی لائنز تو ہیں ہی نہیں, سرحدیں تو ہیں ہی نہیں. تو یہ کہتے ہیں جی کہ میوزک کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, آرٹ کی کوئی سرحد نہیں. ارے بھائی, رب کے بندے کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, رب کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. یہ تو بہت پہلے کا, 1450 سال پہلے کا کانسیپٹ ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں. تو یہ جو ساری باتیں ہیں نا, ہم جب پھر کہتے ہیں جی, یقین کریں کئی لوگ مجھے کہتے ہیں اس طرح کر کے کہ نا آپ ہمیں انسان نہیں سمجھتے. کئی دفعہ ہم نے محسوس, سچ میں کہتا ہوں ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اگر میں آپ کو انسان نہیں سمجھتا تو میں اتنی جان کیوں مار رہا ہوں 15-20 سالوں سے؟ مجھے تو سب پتہ ہے, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو حالات ہیں, جو ایکوریٹ لوگ جن کو اولاد نہیں پیدا کرنی چاہیے ان کے گھر میں اولاد ہے, جو لوگ انسان ہونے کو بڑی صرف کھڑے ہونے کو, بیٹھنے کو, انگریزی بولنے کو, اردو بولنے کو, ڈگریاں اٹھا لینے کو انسان نہیں کہتے آپ. یہ سب کا سب ہمیں جب سمجھ آئے گی, ہر بندہ کونڈ ہے, ہر بندے. دیکھیں میں نے آج تک اتنے لوگوں سے ڈسکشنز کی ہیں, اتنے لوگوں سے, ہر بندے کا کہیں نہ کہیں جا کے ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں سے اس کے اندر کا مسلم جاگ جاتا ہے, ہندو جاگ جاتا ہے, انڈین جاگ جاتا ہے, پاکستانی جاگ جاتا ہے, فلاں جاگ جاتا ہے. رب کا ایلیمنٹ کبھی نہیں اس کو جاگتا اس کا, کیونکہ رب کے ہم نہ جانتے ہیں, نہ سمجھنا چاہتے ہیں, نہ ہم اس سفر کے اندر ہیں. جب تک یہ لائف رب کو نہیں جانیں گے, خود کو نہیں جانیں گے, دنیا کو نہیں جانیں گے, زندگی کو نہیں جانیں گے, ہم کبھی مضبوط رشتے نہیں بنا سکتے. اتنے لوگ عشق کرتے ہیں, میں ڈرامے تھک گیا ہوں, یہ سنی شیعہ کی محبتیں, پھر پوری فیملی سے لڑائی, اور اس کے بعد جب بڑی مشکل سے شادی ہوتی ہے, اور اس کے بعد 2-4 سال کے بعد جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر کھچا کھچائی, ایک ان کو سنی بنانے پہ تلا ہوا, ایک ان کو شیعہ بنانے پہ تلا ہوا. یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ پیغمبر کا تو کوئی سنی شیعہ چکر نہیں تھا. جب مجھے پتا چلا سنی شیعہ کیا ہے, میں کہاں پیدا ہوا تھا, کیا ہوا تھا, میں نے تو یہ کام ہی ختم کر دیا. میں تو نہ سنی لکھتا ہوں, نہ شیعہ لکھتا ہوں, تو نہ میں بتاتا ہوں لوگوں کو, کیونکہ یہ تو چکر ہے ہی نہیں. تو یہ تو بہت بعد میں آتے ہیں. جب آپ کو ایکوریٹلی پتہ چلے گا حضور پاک نماز کیسے پڑھتے تھے, آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم کیسے پڑھنی چاہیے. ہم کو ابھی تک کسی نے ریسرچ کی ہے کہ خدا کا بندہ جس کی وجہ سے سارا پیغمبر ہے, ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا, اور ہم اور ہمارے ہزاروں سالوں سے جو بھی یہ ہمیں باتیں بتائی جا رہی ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ چلا چلایا ہوا سارا کام ہے. تھوڑی سی کوشش کر لینا, آپ کے پاس پیسے آ گئے, ہم امریکہ میں رہتے ہیں, کوئی اٹیک ابھی نہیں ہو رہا یہاں پر, بیسک نیڈز ہماری پوری ہیں, تھوڑی سی ریسرچ کر لینا, تھوڑی سی کاموں کو فگر آؤٹ کر لینا. اور آپ کو پتہ ہے, وہ اگر فگر آؤٹ کرنا چاہتا ہے کہ رب ہے یا نہیں, وہ صرف اس انٹلیکچوئل پرسوٹ میں اپنی زندگی گزار دیتا اور کوشش کرتا رہتا ہے. اس میں وہ مر بھی جاتا ہے تو وہ جنت کا پہلا حقدار ہے. صرف اتنا ویلیو کچھ نہیں ہوگا, نہ آپ ساتھ چل سکتے, کی نہیں ہے. جنگیں تو بہت دور کی بات, جنگ کو کھول کے رکھوں, اس جنگ کو تو آپ کو پتہ چلے, یہ جو ابھی چل رہی ہے, ہاں شروع ہوئی تھی, یہ کس کے ٹیبل پر شروع ہوئی تھی, یہ کس جگہ پر ہوئی ہوگی, اس وقت جو بلاکس ہیں اس میں کہاں پر آپس میں مل کر کی ہوگی, گورنمنٹس کو ڈی کلاسیفائی کیا, جو ٹرمپ کے زمانے میں بتا رہا ہوگا, یہی باتیں ہو رہی ہوں گی کہ یہاں سے یہ دو بندے, یہ دو ملک تھے, انہوں نے ایسا کہا, ہم نے بیچ میں سے ان کو ایسے کہا, اور ہم نے کہا بس اتنا اتنا کر کے پیچھے ہو جاؤ. یہ سارے کا سارا آپ کو ایک دن ڈی کلاسیفائی ہو کے مل جائے گا. یہ پوری جنگ کی ایک حقیقت ایک ٹیبل کے اوپر ختم ہو جاتی ہے, وہیں سے ہی شروع ہوتی ہے. جیسے ایک فلم ہوتی ہے, فلم ایک ٹیبل کے اوپر بنتی ہے ساری کی ساری, اس میں ٹیئر جرکس ڈالے جاتے ہیں, ایموشنز کہاں سے آئیں گے, کون سے ڈالیں گے, یہ ایک لائن ہوگی, یہ کانفلکٹ ہے اس کا, یہ اس کا ریزولوشن ہوتی ہے. اس میں پھر اس کے بعد آتا ہے کس کو رکھیں گے, ان ایکٹرز کے نام کے اوپر پھر پیسے لیے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد کس کو رائٹس دیے جاتے ہیں, وہ سب مل ملا کر فلم پہلے سے پتہ ہوتی ہے, 100 ملین کی ہے, 200 ملین کی ہے, 23 ملین کی ہے, 50 ملین کی ہے. اس سے پہلے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے میں 23, 40, 50 اس کے جتنے بھی بننے, یہ سب ایسے بنیں گے, اور اس سے ہمارا یہ مقصد ہے اور یہ ہم نے اس سے حاصل کرنا ہے, دیٹس آل. ایگزیکٹلی اسی طرح یہ ساری فلمیں, ہم اس میں صرف پون کا کیریکٹر کرتے ہیں, ہماری کوئی اوقات, کوئی سمجھ, کچھ بھی نہیں, نہ کوئی ہمارے لیے کچھ کرتا ہے اور نہ ہم کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. یوز ضرور ہو جاتے ہیں بیکاز ہم نہیں جانتے. اور آپ کو رب کا جملہ سناؤں میں, اور تمہیں سکون کیسے آئے تم جانتے جو نہیں ہو. سمجھیے. اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر
6: रेडियो स्टेशन एट www.radiozart.us. इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे. स्पेशली बताना जरूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आजाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज वहां पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं. और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आजाद. तो हम याद रखिएगा, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा. खुदा हाफिज़.

आजकल लोग सड़कों पर चलते फिरते चोरी के मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरा और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें फरोख्त करते हैं। चोरी की चीज़ें खरीदने का मतलब आप इस चोरी में शामिल हैं। इसलिए चलते फिरते लोगों से चीज़ें हरगिज ना खरीदें, बल्कि ऐसे अफराद के बारे में पुलिस को आगाह करें। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
1: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express. Brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फन सिटी ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तामन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तामन जारी रखेंगे। कोर्ट यूके ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
3: Morning light through the bedroom window, slow motion dust specks swirling in the sun.
4: This is singer-songwriter Dawood Wornsby. Join us on Inspire FM every weekday from Monday to Friday for the Rise and Shine Show with Brother Tariq here.

और ऐड कर लें तो कितना हो गया, 17 + 2 19 हो गया। एटलीस्ट 19 टाइम्स तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि बाकी सुन्नतें भी बहुत अहम हैं, क्योंकि हदीस में आता है कि जो शख्स दिन की 12 सुन्नतें पूरी करे मैं जन्नत में उसको घर की बशारत देता हूँ। जन्नत में घर का वादा है उस शख्स के लिए। हम सब घर चाहते हैं, हर हर औरत को घर बनाने का शौक होता है, घर खरीदने का शौक होता है, सबको है ये, कोई नहीं, सबको होता है, उनको फितरी शौक है। अरे तो परिंदों में भी होता है, जानवरों में भी होता है, इससे कोई बुरी बात नहीं है। और घर भी कैसा बनाने का शौक होता है, खूबसूरत तरीन, तो कोई घर जन्नत से ज्यादा खूबसूरत नहीं। और जब एक वादा है, प्रॉमिस है कि अगर तुम ये 12 पूरी कर लो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, तो हम उसके लिए सुस्ती कर जाते, इधर उधर हो जाते, वो फर्ज पूरा हो गया, काफी, इतना भी काफी, इससे ज्यादा क्या। अगर आप अपने साथ थोड़ी सी गौर व फिक्र करें तो आप देखें कि मसलन जोहर में 4 सुन्नतें पढ़ने के लिए कितने मिनट लगेंगे, 5, 7, 8, मैक्सिमम 8 लगते हैं, अगर आराम से पढ़े तो 8 मिनट्स लगते, 8 मिनट्स तो कोई मुश्किल नहीं है। बहरहाल आदत बनाने की जरूरत है इंशाल्लाह। तो सूरत अल-फातिहा कुरान पाक की अहम तरीन सूरत है, और इसका मशहूर नाम फातिहा इसलिए है कि ये फातिहतुल किताब है, फातिहतुल कुरान है, इससे कुरान पाक की ओपनिंग होती है, कुरान पाक का आगाज होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु, हम्द अलग है, अल अलग है, अरबी जबान में अल का भी माना होता है, और अल कई एक मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन आमतौर पर अल जो है वो किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाता है, यानी किसी आम को खास बना देता है, नकरा को मारुफा कर देता है, खास का माना देता है, जैसे अंग्रेजी में द का लफ्ज, जैसे बुक एंड द बुक। और हम जो है हा मीम दाल, हम्द, हम्द कहते हैं तारीफ को। तारीफ के लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, मदह, मीम दाल है, मदह किसको कहते हैं, तारीफ को, जो आमतौर पर किसके लिए होती, मखलूक के लिए होती है, हम्द अल्लाह के लिए होती है, लेकिन मदह मखलूक के लिए होती है। अमूमन लोग बादशाहों की तारीफ में कसीदे लिखते थे, तो दोनों में थोड़ा फर्क है। हम्द किसी के कमाल की तारीफ करता है, हम्द सिर्फ उसके लिए होती है जिसमें परफेक्शन होती, और परफेक्शन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, इसलिए अलहम्द भी किसके लिए है, अल्लाह के लिए। और परफेक्शन के साथ ये कि उस तारीफ में मोहब्बत और ताजीम भी होती है। मोहब्बत का माने क्या है, लव, एंड ताजीम, रिस्पेक्ट, किसी को बड़ा समझना। तो हम्द का क्या माना हुआ, तारीफ किस पर, उसकी परफेक्शन पर, कैसी तारीफ जिसमें क्या हो, मोहब्बत और ताजीम हो, रिस्पेक्ट हो, उसको कहते हैं हम्द। किसके लिए, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। अब ये जो लिल्ला है, इसमें भी आप सामने देख रहे हैं कि लाम अलग है और अल्लाह अलग। अरबी जबान में हरूफ के भी माने होते हैं, हरूफ मीन लेटर्स, जैसे अलिफ बा ता फा, आज आपने पढ़ा ना, तो सबके तो नहीं, लेकिन बहुत सारे जो लेटर्स हैं उनके भी मानी होते हैं। तो लाम का मतलब है के लिए, फॉर, अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह का लफ्ज जो है ये इलाह से, और इलाह कहते हैं माबूद को, जिसकी इबादत की जाए। वैसे अलह का माना होता है अरबी में हैरान कर देना, और मालूह वो चीज जिस पर इंसान हैरान हो जाए, जिसमें अकल गुम हो जाए। अल्लाह सुभान व तआला ऐसा माबूद है कि जिसको हम ना देख सकते हैं, लेकिन उसने इतना कुछ बना रखा है, उसकी इतनी ज्यादा क्रिएशन हर तरफ फैली हुई है कि जिसको देख देख कर हमारी अकल गुम हो जाती। पहले आप लफ्ज समझ ले, फिर हैरान परेशान होंगे, उससे फिर इलाह का मतलब समझ आता है कि वाकई वही माबूद है, वही हम्द के काबिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी